0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसके साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लीजिए श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोता सुनेंगे अब से कुछ ही पलों बाद कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति आनंद के साथ।

7:05 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। संतोष राव ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और 8:00 आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति आनंद के साथ। 9:00 होगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने, संतोष राव पेश करेंगे कार्यक्रम। और वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:05 पर पूजा आनंद के साथ।

रश्मि गुप्ता पेश करेंगी कार्यक्रम 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स। वेस्टर्न म्यूजिक आप सुनेंगे 12:05 पर और इसके बाद 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन रश्मि गुप्ता के साथ। स्वाति गुप्ता लाएंगी 2:00 कार्यक्रम आशियाना।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर 3 बजे होगा। प्रवीण शर्मा ये कार्यक्रम पेश करेंगे और इसके बाद 4:05 पर श्रोता सुन सकते हैं कार्यक्रम अल्फा जन स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा के साथ। प्रवीण शर्मा लेकर आएंगे सिटी लाइट कार्यक्रम 5:05 पर। मैसेज मसाला मिक्स आप सुन सकते हैं 6:05 पर नीरजा चतुर्वेदी के साथ। ज्योति अलावत कार्यक्रम पेश करेंगी वेस्टर्न म्यूजिक का 7:05।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स एंड वेलकम। दिस इज आकाशवाणी कोहिमा एंड यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम ट्रगोबान एट 103 मेगाहर्ट्ज़। द टाइम इज 6 by the studio clock, and we now begin our first transmission.
2: FM Dragoban
3: 103 MHz.
2: News, music, and

0: FM Dragon Band. 103 MHz. News, music, and entertainment. This is FM Dragon Band. FM 103 MHz.
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

Well, yes, my dear listeners, that was Alligator Sky by The Old City. Of course, that was a great track, right? And I hope that you guys are having a good time listening to that. Well, good morning, RJ ma'am. Greatest playlist to start in the morning. Have a great day, ma'am. And all the FM Tragoban families, name Bhai Snake Humtsoy from Pogidong Village, Woka. Wow, Bhai Snake Humtsoy ji. Namaskar, very, very big salam to you too. Salam ka, my dear, what do we call you? Brother Bhai Snake. That is a really, really kara name, okay? Very kara. Anyways, from Pogidong, well, that was a very, very refreshing message for me this morning. We also have Bhai Snake in FM Tragoban family, all right, my dear listeners. Boi khawe, moi khalo de Bhai Snake PSA. Anyways, we have Durgesh now. Oh, again, another message. Good morning, RJ Veronica ji. Namaskar. Listeners, Suraj Verma, Rishabh Khanak, or Bhavna Verma. Prem Lal Verma, Nikesh Dharmendra, or Mamta Bhai Verma. Mamta Parivaro ko bhi bohat bohat swagat hai. Verma Parivar, I mean not Mamta Parivar. Or I'm so sorry there. Or yes, as requested, Durgesh ji ne apna shayari bhej diya hai. So let's go ahead and let's read it out, okay? Are we all ready? All right. Well, good morning, shayari. Ey suraj, mere apno ko ye pegam dena. Sabko khushiyon ka din aur hasi ki sham dena. Aapki pasandida gaane lagatar FM Tragoban. 103 MHz पर दुर्गेश नागिनपुरे. दुर्गेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे शायरियां भेजते हो. ओके, दिल से दुआ है मेरी ये सुबह तुमसे खिलती रहे और हर एक पल तुम्हारे साथ गुजरने का वक्त मिलता रहे. दुर्गेश जी, देखो, जब भी हम कुछ अच्छा बनाते हैं घर में बिना आपके शायरी के, जैसे कि चाय में चीनी ना हो, शक्कर ना हो, या दाल में तड़का ना हो, ऐसा वाला फीलिंग आता है. लेकिन अभी आपने चीनी भी डाल दिया और शक्कर भी डाल दिया और तड़का भी लगा दिया, हमारे इस शो पर आपने चांद चांद लगा दिया. तो थैंक यू सो मच. ऑलराइट, एंड यस, लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू द नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज कॉल्ड विनर्स नेवर क्विट. सो वी आर ऑल विनर्स, ओके, एंड वी नेवर क्विट. सो लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू दिस ट्रैक विद अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस.

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ

0: साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के

0: आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response.

Well, yes, my dear listeners, this is your Western music right here on Akashvani Kohima FM Dragapan at 103 megahertz. And I hope that you guys are having a good time. I hope that you guys are having a good day as well. Well, we have another message. It writes, good morning, RJ Namaskar. Durgesh Nagenpure, Radhe Shyam Nagenpure, Vandana Bhavna Bindu, Golu Kusumbhai, Babu Divyansh or Suraj Kumar Dakshe. Durgesh Nagenpure ji, aap bahut bahut lambi umar ke saath jiye aur aapke sabhi parivar ko main ye ummeed karti hoon ki aap sabhi ka sehat acha rahe aur aap aise hi khushhali zindagi jiye. Well, Sapat Singh Radio Listeners Group jur chuke hain hamare saath. और हम आपका भी बहुत बहुत अभागी है. थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो बताइए दुर्गेश नागेनपुरी जी, क्या आपके आपको भी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें बताया गया था या कुछ हुआ था बचपन में? जैसे कि मैं जब छोटी थी, मुझे लगता था कि कोई बता रहा था कि अब जब कोई लाल गाड़ी गुजरता है ना रास्ता से, तो उसको चूम लीजिए, अपने हाथों से ऐसे चुम्मा दीजिए तो आपको मिठाई मिलेगा, ऐसा वाला विश्वास. यू नो, अभी हम बड़े हो गए हैं, पता है कि ये सब तो एक बहाना ही था हमें खुश करने के लिए, लेकिन इतना खुशहाली था. यू नो, एंड आई हैव ऑल्सो लर्न्ड वन थिंग, एंड दैट सम ऑफ आर फनीएस्ट चाइल्डहुड मिसअंडरस्टैंडिंग्स नाउ, यू नो, दिज आर आर फेवरेट स्टोरीज एज एडल्ट्स. Right? So yes, let's go ahead and I'll be taking more of your messages after we listen to some of the tracks, all right? This is one thing coming up your way. This is One Direction.

Well, that was a refreshing track, right, my dear listeners? And yes, we have Suraj Verma, Rishabh Khanak, or Bhavna Verma, Premlal Verma, Nikesh Harshita, or Mamta Bhai Verma, wishing us a good morning and a very big salam. A big salam to you too, all my dear Verma Ji Parivars and Verma Parivars. Thank you so much for tuning in again. Well, we also have another message, Durgesh Ji writing in, RJV, ye to kismat ki baat hai, ki hume apne zindagi mein kya khona hai, kya paana hai, main to apne bachche, babu Divyansh ko chuma deta hoon. Listeners, Durgesh Ji, well, Durgesh Ji, ye to banta hi hai, ek baap ka haq banta hai, bachcho ko sambhalna, बच्चों का साथ देना, बच्चों को सिखाना एक पापा ही तो कर सकते हैं, ये भी है ना, एक पापा का हाथ हो तो बच्चों को क्या डर है. वेल यू नो, यहाँ पे दुर्गेश जी ने एक बहुत ही प्यारा सा शायरी फिर से भेजा है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं हम सभी मिलके. आई है नहीं, ये नहीं, ये वाला मैंने, हाँ, आई है नई सुबह वो रोशनी लेके, जैसे नए जोश के नई किरण चमके, विश्वास की लो दिल में सदा जला के रखना, देगी अंधेरों में रास्ता दिया बन के. गुड मॉर्निंग, आपके पसंदीदा गाने लगातार FM ट्रकबैन 103 MHz पर, लिसनर्स दुर्गेश नागिनपुरे, बाबू दिव्यांश और वंदना नागिनपुरे. दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अच्छा अच्छा शायरी लिखी आज सुबह, मेरे को बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आप जैसे, यू नो, लिसनर्स के साथ जुड़ते हुए. और आरजेवी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे फेवरेट आरजे हो, लिखते हैं दुर्गेश जी. दुर्गेश जी, आप हमें, मैं शर्मा गई हूँ थोड़ी सी, लेकिन अच्छा भी लगता है जब कोई लिसनर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर पाते हैं. तो ऐसे ही हम सभी आरजेस को प्यार देते रहिए. दुर्गेश जी, आपका तो बहुत बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस FM ट्रैकोपैन में. ऑलराइट, एंड यस, लेट्स मूव ऑन. मैं बहुत बकबक कर रही हूँ आज सुबह. Let me go ahead and quickly give you the next track. This is Give Me a Reason by Pink.

Well, yes, my dear listeners, I hope you guys are having a good time with me, your host. All right. Anyways, we have a ton of messages coming in, so let me quickly take it for all of us. आज तो तुमने वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम में आपका आप आके हमारा दिन बना दिया दोस्तों. रेडियो सुना करो, रेडियो में जिंदगी है. दुर्गेश नागिनपुर जी, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, आप सही कह रहे हैं. रेडियो में जिंदगी है, और कहाँ जहाँ कहीं भी जाओ, रेडियो के बिना कुछ ना कुछ तो अधूरा ही है. जैसे आप दिन भर अपने फ़ोन पर गाने सुनते रहो या न्यूज़ देखते रहो, लेकिन रेडियो पर गाना सुनना और मोबाइल पर गाना सुनना बिल्कुल ही अलग सा महसूस करवाता है. ये आप हमसे सहमत होंगे, है ना? और यस, वी आल्सो हैव गुड मॉर्निंग एफएम ट्रैगोबन फैमिली, एफएम ट्रैगोबन रेडियो लिसनर्स ग्रुप, ग्राम जसवादी से. ग्राम जसवादी से जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और जी हाँ, एक बार फिर से धन्यवाद, आप सभी ने वक्त निकाला. और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ ग्रुप्स होते हैं जो साथ रहकर, साथ मिलकर बैठते ही रेडियो सुनते हैं. ये तो मैंने पहली बार सुना है, और कभी सुना भी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है कि यहाँ पे जो अगला प्रोग्राम आने वाला है ये है, वो रेडियो चैनल पर ये आने वाला है. तो ये एक बहुत अच्छा सा मोटिव है आप लोगों का, जो आप लोगों ने शुरू किया. ऐसे ही रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम. ऑलराइट, और यहाँ पे एक प्यारा सा कुछ लिखकर भेजा है दुर्गेश जी ने फिर से. मुस्कुराहट तुमसे ही मिलती है, दर्द को राहत तुमसे ही मिलती है, रोना कभी मत हमसे ए दोस्तों, हमें जीना जीने की चाहत आपसे ही मिलती है. लिसनर्स जी जी, वाह वाह वाह दुर्गेश जी, दाद देती हूँ मैं आपकी जो शायरी लिखने का अंदाज़ है, लेकिन मैं बहुत बात कर रही हूँ, है ना? जल्दी से आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक, बिकॉज वी हैव ओनली अराउंड 10 मिनट्स ऑन द क्लॉक. Let's go ahead and listen to Be Brave. This is by The Old City.

प्यार होता तो भूल जाता, दिल के होती तो खो जाते, इश्क था इसलिए दिहार का या। हेलो गुड मॉर्निंग आदित्य तमजन, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग पल पल, आई एम थ्रूली हैविंग अ ग्रेट टाइम। कोई ना अमी खलनागर लिसनर दोनी ब्रा कोई मरबा लिखना बताई दिया।

0: FM 103 MHz.
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू,
3: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी

की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में ARF की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हाँ, आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त RJ रॉकिंग रश्मि। और आज रेनबो हेल्पलाइन में हम लेकर आए हैं एक खास विषय। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे बच्चे को जरूर देखा होगा जिसकी त्वचा का रंग थोड़ा ज्यादा सफेद या भूरा सा है, आंखें थोड़ी कम खुली हुई, या और सिर के बाल भी आपने देखे होंगे कि उनके पूरी तरह से सफेद हैं, यानी वो एल्बिनिज्म से ग्रसित हैं। आम लोगों की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े से अलग दिखते हैं, लेकिन इन्हें एल्बिनोस कहा जाता है। जनरली लोग इन्हें सूरजमुखी वाले लोग कहते हैं। सुना है ना आपने, देखा भी बिल्कुल होगा, इस शब्द के साथ आप एकदम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो बस आज का रेनबो हेल्पलाइन लेकर आए हैं हम इसी विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सरकार, VMMC कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। और आज का हमारा विषय है एल्बिनिज्म, सन सेफ्टी, स्किन केयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, उसी उपलक्ष में आज का एक खास प्रोग्राम आपके लिए। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे FM रेनबो के स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार मैम का इतना मतलब जबरदस्त नमस्कार है, तो मुझे लगता है हमारे सारे लिसनर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं सुनने के लिए इस प्रोग्राम को, क्योंकि अक्सर दोस्तों हम सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, लेकिन वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। कैसे पता चले, क्या इसके कारण होते हैं, और कैसे हम इन लोगों को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो आज के रेनबो हेल्पलाइन में करेंगे हम इसी विषय पर बात। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है हमेशा की तरह 0112342108 और 0112342108।

0: जी हाँ बिल्कुल, इसी बहाने ही आप दिल का हाल जान लीजिए उन लोगों का जिन्हें एल्बिनिज्म है या जिन्हें एल्बिनोस कहा जाता है, यानी कि सूरजमुखी वाले लोग कहा जाता है। मैम, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहती हूँ कि एल्बिनिज्म वास्तव में क्या है और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है।
1: सो रश्मि जी, ये पहली बात है कि जो आपने अभी बताया एल्बिनिज्म को हम रंगहीनता भी कहते हैं।
0: ओके।
1: और सूरजमुखी भी, जैसे आपने बताया है, सूरजमुखी मींस कि आप मतलब धूप की तरफ फेस कर रहे हो।
0: जी
1: ठीक है, तभी ये नाम आया है, मतलब इट्स अ कोलोकियल वर्ड जो है। और ये जो है एक्चुअली डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है। और इसकी अवेयरनेस के लिए कई साल पहले जो है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में ये मतलब बात छेड़ी गई थी, और उसके बाद ये 2015 ऑनवर्ड्स ये सेलिब्रेट होता है, रादर ऑब्जर्व होता है 13 जून को
0: जी,
1: कि ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है इनको भी हमें समाज में शामिल करना चाहिए। और मतलब वी हैव टू टेक केयर कि इनका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इनके जो त्वचा है, त्वचा में कोई भी रंग नहीं है, जो मेलानिन होता है
0: जी,
1: एक रंग होता है, पिगमेंट होता है, तो वो जेनेटिक रूप से ये नहीं बनता है इनके, इसलिए आप जो देखेंगे वो पूरा शरीर ही इनका जो है सफेद होता है।
0: जी जी,
1: सो इट्स अ जेनेटिक कंडीशन।
0: ओके, तो हम इसे एक नॉर्मल बीमारी नहीं कह सकते जैसा कि कुछ लोग समझते हैं?
1: नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि और कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं बहुत कुछ, बस यही है कि उनको अपना देखभाल करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे

0: अपनी त्वचा को देखना, आंखों को देखना, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं इनके साथ मतलब कैसे मतलब ठीक करना है
1: जी, जी.
0: अगर ये करें तो ये काफी मतलब ठीक तरीके से रह भी सकते हैं, जो करना चाहे प्रोफेशनली वो भी कर सकते हैं
1: जी. एल्बिनिज्म होने के पीछे कारण क्या है, क्या मतलब ये माता पिता से बच्चों में आता है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से हम इसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं?
0: ये जो है ये केवल जेनेटिक ही है, मतलब ये जीन्स में होता है, डेफिनेटली माता पिता में के होने से ये होता है, बट वो हमेशा नहीं है कि माता पिता के होने पर ही होगा. इसमें कई चीजें हैं, जैसे अगर माता और पिता दोनों ही कैरियर्स हैं जीन के, ठीक है
1: जी,
0: अगर कैरियर हैं जीन्स के, फिर मैं मतलब सामान्य रूप से आपको बताना चाहती हूँ, तो फिर परसेंटेज चांसेस जैसे हैं कोई बच्चे का बर्थ हुआ, शायद 25% चांस है कि उनको एल्बिनिज्म होगा. ऐसे ही है कि अगर एक पेरेंट को है एल्बिनिज्म पूरी तरह से जो आपको दिख रहा है, एक को मतलब जस्ट कैरियर है जीन का, फिर शायद ज्यादा चांसेस हैं. तो इस तरीके से आपके बढ़ जाते हैं, बट ऐसे भी हैं कि काफी मतलब परसेंटेज पे नहीं भी हो सकता है, सिर्फ वो कैरियर्स ही रह सकते हैं
1: जी. तो क्या मैम ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें माता पिता को एल्बिनिज्म नहीं है लेकिन बच्चे को है, या नवजात शिशु में ये पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में माता पिता को क्या करना चाहिए?
0: जी ये जरूर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता को ये हो सकता है कि क्लिनिकली मतलब देखने में नहीं पता चल रहा है कि एल्बिनिज्म है, लेकिन उनपे जेनेटिक डिफेक्ट है
1: जी,
0: ठीक है, तो लेकिन उनको पता नहीं चला है, लेकिन दोनों लोगों में है. जैसे कई बार जैसे होता है कि परिवार में शादी होती है, कंसैंग्विनिटी, तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर वो हो फिर ये बच्चे में आपको एकदम से दिखेगा नवजात शिशु में कि एल्बिनिज्म हो गया है, लेकिन माता पिता में कभी पता नहीं चला है. इन दैट केस ये होगा कि माता पिता को अब पता चल गया है तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बच्चे के लिए क्या करना है प्रिवेंशन के लिए
1: जी,
0: ये देखना होगा. और ये तो माइंड में रखना ही पड़ेगा कि नेक्स्ट कुछ जो अगर सब्सिक्वेंट बर्थ्स हो
1: जी,
0: उसमें हो सकता है किसी बच्चे को हो भी सकता है एल्बिनिज्म, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नेक्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, इट डिपेंड्स मतलब कि क्या है, बट अवेयरनेस उनको हो जाना चाहिए कि हम में डेफिनेटली कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, इसलिए बच्चे को हुआ है.
1: तो बहुत ख्याल से रखना चाहिए, माता पिता को ये देखना पड़ेगा यदि उनके नवजात शिशु में इस तरह की कोई भी कंडीशन नज़र आती है तो इन फ्यूचर के लिए उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो उसका ख्याल रख सकते हैं. हमें भी आपका ख्याल है इसीलिए लेकर आए हैं हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा ट्रैक. सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए और रेनबो हेल्पलाइन से जुड़े रहिए. आज का हमारा विषय है एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता. यदि इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी का कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं और उससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 011-2342-1080 और 011-2342-1084. आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें मैसेज लिख सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070.

0: रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, यानी कि रंगहीनता। कुछ लोग इसे फूल बहरी या विटिलिगो से भी सोच सकते हैं, लेकिन सच मानिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एल्बिनिज्म एक वो बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया। और आगे हम ये बात करना चाहेंगे इस विषय पर कि जो ये पेशेंट्स होते हैं उन्हें किस तरह से अपने त्वचा को धूप से बचाव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी त्वचा, बालों या आंखों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेसिकली लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं।
1: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन में, त्वचा में प्लस आँखों में प्लस बालों में जो है, जो पिगमेंट होता है मेलानिन के कारण, जो पिगमेंट है वो इनमें या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। और ये जो मेलानिन ये और या पिगमेंट है, इसका मेन रोल होता है हमारे स्किन में या आंखों की पुतली, जो काली वाली पुतली होती है
0: जी,
1: कि बेसिकली ये फिल्टर आउट करता है, जैसे धूप के रेज, यूवी रेडिएशन आता है, इसको कुछ हद तक ये फिल्टर कर देता है ताकि कोई सेंसिटिविटी ना हो।
0: ओके।
1: तो अब इनके पास ये तो नहीं है, बहुत ही कम है, इसलिए जो है इनको धूप से जो है काफी बचाव इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है इसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, धूप

0: में जाने से, बहुत जल्दी जैसे लाली हो जाना
1: हाँ
0: या मतलब बर्निंग सेंसेशन होना है, ऐसी सारी चीजें हैं। तो स्किन में तो ये है कि उनको बहुत ज्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट कुछ पेशेंट्स में जिनको सिवियर होता है वो धूप की तरफ ज्यादा देख ही नहीं सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो ये इससे आपको पता लगता है कि उनको बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी है।
1: जी
0: इसके अलावा क्योंकि ये प्रोटेक्टिव जो होता है मेलेनिन वो नहीं है, ये जो स्किन है हमारा ज्यादा प्रोन होता है टू सनबर्न्स और स्किन कैंसर।
1: ओके
0: स्किन कैंसर देखिए वैसे तो एक तरीके से इंडिया में थोड़ा सा कम है क्योंकि हमारा स्किन जो है डार्क ब्राउन है
1: जी
0: तो हम वैसे ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन इनके स्किन में जैसे हमने बात की नहीं है इतना ज्यादा, तो इसलिए ये है कि दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर्स।
1: ओके
0: इसलिए आपको हमेशा ये देख के रखना चाहिए कि कुछ भी ब्राउन स्पॉट्स आए, कुछ उभरे हुए स्पॉट्स आए बहुत ज्यादा कभी चेहरे पे आए या ऐसे कुछ आपको लगे, या आपके मोल्स वगैरह जो हैं वो बढ़ रहे हैं जो है ना जिसको
1: जी
0: हम जेन चेन कहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए
1: ओके
0: और दिखाना चाहिए। तो स्किन में तो ये इश्यू है ही है जो
1: जी
0: है। उसके अलावा जो है मतलब, और बचपन से आपको पता भी चलता है इसमें कुछ डार्क स्पॉट्स आते हैं जिनको हम फ्रेकल्स कहते हैं,
1: जी
0: फ्रेकल्स कहते हैं या लेंटिजीन्स होते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, या जो थोड़े से मतलब एज वाले होते हैं सेबोरिक केराटोसिस जो उभरे हुए ब्राउन मतलब निशान होते हैं, ये
1: जी
0: सब आ
1: जी
0: सकते हैं। अब इसके अलावा आंखों में भी ये कम है, ठीक है, मेलेनिन। तो हमारी जो काली पुतली है आंखों के अंदर आयरिस जो है वो बेसिकली वो भी फिल्टर करती है धूप को ताकि वो डैमेजिंग रेज अंदर नहीं आए।
1: जी
0: तो आई के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे एक तो जो है फोटोफोबिया,
1: जी
0: मतलब धूप की तरफ देखना आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को, एकदम मतलब देख नहीं पाते कुछ
1: जी
0: कुछ पेशेंट्स।
1: जी
0: फिर उसके अलावा जो है इनका जो विजुअल एक्विटी है, देखने का जो जो शार्पनेस है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे वो गहराई देखना या डिस्टेंस देखना उसमें दिक्कत आती है उनको, विजुअल एक्विटी कम है।
1: जी
0: जैसे हम जिस जो फॉन्ट में पढ़ सकते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट हो तो इनके लिए बेटर होता है।
1: जी
0: और इसके अलावा कुछ अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं आईज की जिसको हम नेस्टैग्मस कहते हैं,
1: जी
0: और स्क्विंट,
1: ओके
0: स्क्विंट भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें आईज पे होता है, तो आई स्पेशलिस्ट या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को तो डेफिनेटली मतलब मिलना चाहिए
1: जी
0: और प्रॉपर उनसे राय लेके प्रॉपर ग्लासेस या लेंसेस या विजुअल एड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाता है।
1: जी अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि ये जनरली बर्थ से ही हो जाता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें थोड़े टाइम के बाद पता चले, या मतलब कुछ बच्चों को देर से एल्बिनिज्म के बारे में पता चले?
0: यूजुअली ये होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे बॉडी पे होता है,
1: जी
0: तो ये तो डेफिनेटली है कि देख के लगता है कि कुछ ज्यादा ही सफेद है,
1: जी
0: मतलब नॉर्मली इतना वाइट नहीं होता है
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: बिल्कुल मतलब रंग नहीं होता है या कम होता है,
1: जी
0: स्किन पे हो फिर तो पहचान हो जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पूरी तरह से नहीं आता जेनेटिकली, शायद सिर्फ आंखों में हो,
1: अच्छा
0: वो फिर देखिए एकदम नवजात शिशु में तो नहीं पता लगेगा क्योंकि
1: बिल्कुल
0: एकदम छोटे बच्चे में नहीं पता चलता,
1: जी
0: जैसे वो बच्चा शायद थोड़ा बड़ा हो या आपको लगे कि उसको ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है या ऐसे हो रहा है,
1: जी
0: तब वो आई गेस आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा के पता चल सकता, वो फिर थोड़ा सा लेटर एज पे पता चल सकता
1: जी
0: है।
1: एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं पैंथर तोमर किशनगंज दिल्ली से। कहते हैं अंग्रेजों की जो चमड़ी होती है बचपन से ही ऐसी दिखाई देती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो बचपन से ही एल्बिनिज्म के शिकार हैं?
0: नहीं ऐसे नहीं है,
1: जी
0: वो उनका जो है ऑब्वियसली स्किन टाइप, हम स्किन टाइप कहते हैं या स्किन टोन कहते हैं,
1: जी
0: हम सबके स्किन टोन थोड़े से अलग अलग हैं। मतलब मैं अगर आपको मतलब सिंपली बताऊं तो फिट्स पैट्रिक हैं तो पांच छह टाइप के होते हैं,
1: जी
0: उनका टाइप 1, 2, 3 होता है जो लाइट स्किन होता है,
1: जी
0: मेलेनिन
1: जी
0: कम है और हमारे वाले में ज्यादा होता है मेलेनिन। तो उनके स्किन में ऐसे नहीं है कि मेलेनिन बिल्कुल नहीं है, तो उनका एकदम सफेद नहीं होता है, उनका एक्चुअली बहुत ही हल्का ब्राउन
1: ब्राउन होता
0: या
1: है ये
0: हल्का आप कह सकते हैं भूरा होता है।
1: जी
0: तो नहीं उनका नहीं एल्बिनिज्म है, उनका स्वाभाविक रूप से सभी वैसे हैं,
1: जी
0: बट आप हमें पता है कि एज एन इंडियन हमारा एकदम से वाइट नहीं होगा,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: डेफिनेटली अगर एकदम वाइट वाला कोई बच्चा, वाइट स्किन वाला होगा तो, और पेरेंट्स का नहीं है इतना ज्यादा, तो दैट इज

0: डेफिनेटली समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा कि वो स्वाभाविक रूप से नहीं है।
1: मैम एक सवाल इनका और भी है, ये पूछना चाहते हैं गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में पल रहे शिशु को एल्बिनिज्म है या नहीं, क्या इसका पता लगाया जा सकता है?
0: आई थिंक इसमें जो है इसमें जेनेटिक रोल है, मतलब
1: जी जी
0: हाँ, तो जेनेटिक मतलब इसमें जो है जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह है, बट उसके लिए जो है आपको यू हैव टू गो, मतलब जो पर्टिकुलरली कोई हॉस्पिटल्स डील करते हैं द जेनेटिसिस्ट या जो पीडियाट्रिशियन है दे मे बी एबल टू मतलब फाइंड आउट कि जेनेटिक टेस्ट हो सकता है प्रीनेटल की नहीं कि पता मतलब वेदर बच्चे को एल्बिनिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
1: अच्छा क्या इनकी ये सबके सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं या अलग अलग स्टेजेस होती हैं या किसी को कम किसी को ज्यादा होता है, जैसे आपने अभी बताया सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं?
0: देखिए सिम्टम्स तो एक ही जैसे होते हैं, मात्रा में मतलब अलग अलग हो सकते हैं, मतलब किसी को जैसे है स्किन में है बट उसको शायद फोटो सेंसिटिविटी थोड़ा कम है या फोटोफोबिया जैसे मैंने आंखों का बोला, क्योंकि ये दो चीजें हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है डील करने के लिए
1: जी।
0: कम है किसी को ज्यादा है, तो वो मात्रा डेफिनेटली डिपेंड करता है क्योंकि जीन्स भी काफी सारे हैं और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन कब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर दैट इज व्हाट इट इज, तो डेफिनेटली डिग्रीज विल डिफर, मेरा मतलब ये है कि मात्रा अलग अलग हो सकता है
1: जी। अच्छा मैम जैसा आपने बताया कि इन्हें धूप से काफी परेशानी होती है, खासतौर पे जो इनकी त्वचा है
0: जी
1: उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो क्या सनस्क्रीन इनके लिए सही रहता है?
0: हाँ सनस्क्रीन बिल्कुल ही सही रहता है
1: जी,
0: सनस्क्रीन तो लगाना चाहिए ही, ठीक है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है वो मतलब वो लगा ले एंड मतलब दैट इज
1: कितना एसपीएफ होना चाहिए इन
0: एसपीएफ? देखिए इट शुड बी मोर देन 30, सो अबाउट एसपीएफ 50 वुड बी गुड इनफ, लेकिन हमारे इंडियन स्किन के लिए 30 एंड अबव शुड बी ऑल राइट, तो वो यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा दे कैन ऑल्सो यूज जैसे टोपियां यूज कर सकते हैं, कैप्स यूज करते हैं जो यू नो नेचुरल चीजें हैं, अम्ब्रेला ले लीजिए आप
1: जी जी जी,
0: हाँ छतरी ले लीजिए, गॉगल्स पहन लीजिए जो है, दुपट्टा कुछ नहीं तो इवन दुपट्टा से आप कवर कर सकते हैं, तो ये भी आप जरूर करिए। और दिन के जो वो पार्ट है ना जब धूप सबसे तेज है जैसे
1: जी,
0: ठीक है, एक तो जैसे 11 से 2 सबसे तेज है बट अदरवाइज 8 से 4 तक है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए कि बहुत ज्यादा
1: तेज धूप में ना
0: धूप में आप नहीं निकले
1: जी जी जी। हम आज बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, एक अलग तरह का टॉपिक, एक खास टॉपिक जिसे आपने बचपन से कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनका जिनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से सफेद है और वो कुछ अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तब ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कि हमसे अलग थोड़े से अलग क्यों है। यदि आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दिया है और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नॉर्मली आप बिहेव करें और उन्हें अपने साथ, आपने स्कूलों में भी देखा होगा, समाज में इधर उधर घूमते हुए भी देखा होगा, तो आज का हमारा रेनबो हेल्पलाइन का विषय है यही एल्बिनिज्म, सन सेफ्टी, स्किन केयर एंड क्वालिटी लाइफ। तो यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं 9868107070 पर।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो पार्सल हो सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आज आपके साथ आरजे रॉकिंग रश्मि, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि सरकार। जी हाँ, आज दो दो रश्मि आपके लिए आई हैं, और प्रोग्राम है एल्बिनिज्म पर। यदि आपका भी कोई इससे जुड़ा सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सरकार, VMMC कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। यदि आपका भी एल्बिनिज्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं 011-234-21080 और 011-234-21084। और यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9868107070। मैम, जो से एल्बिनिज्म की हमने बात की कि इन लोगों को रोजमर्रा की लाइफ में त्वचा से संबंधी या आंखों से संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? और जैसा कि हमने स्किन केयर की बात की, इन लोगों को क्या स्किन केयर का होने की संभावना आम लोगों की तुलना में ज्यादा होती है?
1: हाँ रश्मि जी, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो इनको देखभाल बहुत ही अच्छी तरह अपना करना चाहिए
0: जी,
1: मतलब ऑल्दो ये डिजीज नहीं है, देखभाल बहुत इम्पोर्टेंट है इनका
0: जी।
1: तो आम लोगों की तुलना, जैसे स्किन में मैंने बोला है कि सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाना है या धूप से बचाव, वो तो मस्ट है जो इनको करना ही करना है। और बिसाइड्स दैट, इनको ये भी है कि अगर उनको लगे कि छोटे छोटे कोई काले निशान आ रहे हैं, ब्राउन कलर के निशान आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं, तो इनको स्किन स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली दिखाना है। मैं कहूंगी कि इसमें इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई निशान आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 3 महीने या 6 महीने में स्किन स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली विजिट करिए
0: जी जी,
1: और उनको दिखाइए कि ये नेचुरल है कि अननेचुरल है
0: जी जी जी,
1: बिकॉज वो मतलब एकदम बिगिनिंग वाला रूप होगा कि कोई भी चीज अगर ऐसे है कि स्किन कैंसर हो रहा है या वो मतलब बेनाइन से मैलिग्नेंट हो रहा है, एटलीस्ट आपका स्किन स्पेशलिस्ट वो बता पाएगा।
0: अच्छा मैम, सनस्क्रीन के अलावा मॉइस्चराइजर या जो दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है इन लोगों के लिए?
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। एक जो स्किन में डर्मेटोलॉजी में सबसे बड़ी जो हमारी संस्था है या जो अम्ब्रेला संस्था है 2050 संस्थाओं की, उसका नाम है इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटीज ILDS। उसमें जैसे मैं बोर्ड मेंबर हूँ, उसका काम होता है कि WHO के साथ और ऐसी बड़ी संस्थाओं के साथ अवेयरनेस पैदा करना
0: जी जी।
1: एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2025 लास्ट ईयर ही स्किन हेल्थ को भी लिया गया था एज अ प्रायोरिटी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि त्वचा की बीमारी है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो रेजल्यूट

0: से वो अडॉप्ट किया गया कि स्किन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और इन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन
1: जी
0: सनस्क्रीन को भी लिया गया है फॉर पर्टिकुलरली फॉर एल्बिनिज्म, क्योंकि ये माना गया है कि एल्बिनिज्म के लिए इट इज अ मस्ट. तो स्किन का तो ये रोल है ही है प्रोटेक्शन के लिए, बट बिसाइड्स दैट मैं आपको बोलूं स्कूल में जैसे है ना बच्चों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर खास ख्याल रखे जैसे वो ब्लैक बोर्ड के थोड़े पास बैठे
1: जी,
0: रोशनी जो है वेल लाइटेड एरिया है ताकि वो थोड़ा देख सके. और जनरली इनका जैसे है बहुत छोटा प्रिंट होगा इनको देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो फिर बड़े फॉन्ट्स आर ऑलवेज बेटर, तो थोड़ा कुछ केयर वो रख सकती हैं. प्लस ये भी देखिए मतलब बच्चों को टीजिंग और बुलिंग वगैरह भी नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ट्रीटमेंट, क्योंकि पेशेंट्स को एज सच पूरा ही स्किन वाइट है तो उनको उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है
1: जी. तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें इस बात को ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि हमें इनकी सहायता करनी है ताकि ये भी रूटीन लाइफ अपनी डेली लाइफ बहुत ही आराम से जी सके, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम और आप नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली सारे काम करते हैं. तो मैम जैसे तेज रोशनी इनको नुकसान देती है, स्कूलों में आपने बताया कि बड़ा फॉन्ट उनके लिए हो, ऐसी जगह पर उन्हें बिठाया जाए जहां से इन्हें ब्लैकबोर्ड देखने में तकलीफ ना हो. अच्छा एक सवाल हम तक फिर से पहुंचा है, किशनगंज से ही है. एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में अक्सर अलग निगाह से देखा जाता है, क्या वास्तव में ऐसा करना सही है? इनका दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है? ये दो सवाल ये जानना चाहते हैं.
0: सो पहला सवाल जो है देखिए वो समाज का ही एक पार्ट है, ठीक है. जैसे मैंने बताया कि वो किसी को भी हो ही सकता है, कई बार पता भी नहीं चलता है पेरेंट्स पे, तो डेफिनेटली इनको हमें अलग नहीं रखना चाहिए. रादर हमें ये सोचना चाहिए वो हमारी तरह ही हैं, पिगमेंट थोड़ा सा कम है, तो क्योंकि इनको बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है
1: जी,
0: क्योंकि इनको अलग किया जाता है, कई बार इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा सकता है, टीजिंग बुलिंग. इनफैक्ट अफ्रीका में कई डेथ्स भी होते हैं, कई बार लोग इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते,
1: लोगों के बीच में कुछ अंधविश्वास होता है कि ये इस तरह का व्यक्ति आ गया है तो शायद कोई हमारे ऊपर किसी का साया आ गया
0: साया
1: है, तो,
0: आ गया है
1: जी जी.
0: और या फिर इनको मानने से मतलब हमारा जो लक है वो बेटर हो जाएगा, ऐसे यहाँ इंडिया में नहीं है लेकिन अफ्रीका में काफी जगहों पे है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि इनकी को लाइफ इनके लाइफ को बेटर करने में हमारा काफी हाथ हो सकता है.
1: बिल्कुल,
0: तो वो एक चीज है. सेकंड इनका जो सवाल है मेरे ख्याल से कि वो संक्रामक है कि नहीं है, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. ये टोटली जेनेटिक बीमारी है, एक से दूसरे को नहीं हो सकता है. तो आप आराम से आपका फ्रेंड आपके साथ बैठ सकता है जिसको एल्बिनिज्म है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, वापी की तरह है, बस रंग जो है जैसे मैंने बोला रंगहीनता या रंग कम है.
1: तो मैम क्या ये दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं?
0: एग्जैक्टली तो देखिए नहीं आते हैं उस तरीके से, बट ऑन द सेम एट द सेम टाइम सिंस आप पूछ रहे हैं, आंखों की जो है ना
1: जी
0: डेफिनेटली विजुअल एक्विटी कम है, तो दैट वे विजुअल एक्विटी आ सकता है विकलांगता में जो है, मतलब ऐसा अगर एल्बिनिज्म नहीं आए तो अगर आंखों में विजुअल एक्विटी कम है उस तरीके से वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो देखिए वो नॉर्मल है, आपकी तरह ही उठता है,
1: सभी की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं, शिक्षा में या रोजगार में भी वो समान अवसर उन्हें मिलते हैं.
0: आंखों की डेफिनेटली दिक्कत है वो कम है, उसमें आ सकता है, डिपेंड करता है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कितना कम है वो.
1: जी जी जी. आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म से और मैम आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक का समय हुआ है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं और साथ में सुनते हैं मैम की पसंद का एक और प्यारा सा ट्रैक.
2: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुँच जाएगा।
4: हाँ

0: भाई ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं एल्बिनिज्म की, सन सेफ्टी, स्किन केयर और साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ की। दोस्तों, एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों को ना स्वास्थ्य और साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बहुत से उपायों की, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ उन्हें ज़रूरत है आपके द्वारा दिए गए सम्मान की, समानता की। तो मैम, यदि इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लोग किस तरह से इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं कि उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें?
8: आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी बोला है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का तो है ही बहुत ज्यादा रोल, क्योंकि ये जो है इनको हमेशा लगता है कि लोग इनके साथ व्यवहार ठीक से नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रोल आ सकता है पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। सो जैसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे जिनको एल्बिनिज्म है, लेकिन मतलब उन्होंने काफ़ी अचीव भी किया है लाइफ में, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हैं जिसमें काफ़ी पेशेंट्स इकट्ठे एक दूसरे से मतलब मिलते हैं या बात करते हैं, तो उनसे जो है एक दूसरे से काफ़ी हौसला मिलता है। इसकी एक्चुअली बहुत ज़रूरत है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सोसाइटीज़ तो हैं, अफ्रीका में हैं काफ़ी, बट इंडिया में इस मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली जरूरत है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहती थी
7: जी,
8: कि दिस इज रिक्वायर्ड। ग्लोबल एल्बिनिज्म एसोसिएशन या GAA के नाम पे ये एल्बिनिज्म है एक अवेयरनेस का पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन।
7: ओके,
8: सो दैट इज एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो मतलब पहुंच सकते हैं
7: जी,
8: मतलब ऑब्वियसली इट विल बी देयर गूगल पे। ये एक चीज है, रोल और भी है, जैसे एनजीओस का काफी रोल है इसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली अगर लोगों को पता हो तो आधी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएं।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
8: मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं कि इनको सम्मान की बहुत जरूरत है
7: जी,
8: आधा तो देखिए उसी से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगा जैसे आप कह रहे थे। और इसमें मैं मानती हूँ कि मीडिया का काफी रोल है, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं रश्मि जी
7: जी,
8: इसमें ये लोगों को पहुंच रहा है। तो अदरवाइज इससे पहले एल्बिनिज्म के बारे में इतनी बात होती नहीं थी
7: जी जी जी,
8: ज्यादातर विटलाइगो पे होता है, फुटबेरी पे होता है। तो आई थिंक ये काफी हेल्थी साइन है, इसका हो या सोशल मीडिया में हो या टेलीविजन के दौरान हो या किसी भी चीज में, तो आई थिंक मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मतलब लोगों को बताना कि मतलब ये डिजीज नहीं है, एक जेनेटिक कंडीशन है
7: जी। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भेदभाव इन लोगों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि एनजीओज और मीडिया इस विषय पर और ज्यादा काम करें तो आई थिंक जो लोगों के बीच में इनके बारे में मिथ है
8: जी,
7: जैसा कि आपने बताया कि लोग इसे समझते हैं कि संक्रामक रोग है, या थोड़ा ये समझते हैं कि ये ईश्वर की दिया कोई श्राप इनको मिल गया है, वो चीजें ना समझ के जागरूकता फैलाई जाए तो आई थिंक इनके साथ में समानता का व्यवहार किया जाना शुरू हो जाएगा। तो जो भी हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, यदि उनके आसपास भी कोई इस तरह का व्यक्ति है जो एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता का शिकार है, तो प्लीज उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, उनके लिए अपने आसपास के लोगों के बीच सही जानकारी फैलाएं, और यदि उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उनको जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि उनका सही इलाज हो सके। मैम, हमारे पास कुछ एक मैसेज आए हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर से हैं। इनके जो सवाल हैं वो लगभग हम सारे पूरे प्रोग्राम में इसी विषय पर बात कर रहे थे, तो चलते चलते एक रिकैप आप जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया है, इंदर सिंह लिख रहे हैं रोहिणी से, ये पूछना चाहते हैं कि क्या जीन थेरेपी के द्वारा इसका इलाज संभव है?
8: इनका जो मतलब प्रश्न है, आई थिंक काफी अच्छा प्रश्न है
7: जी,
8: क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो जीन थेरेपी है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, क्योंकि काफी सारे जीन्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं
7: जी
8: कि जिससे ये कंडीशन हो सकता है। इन द फ्यूचर डेफिनेटली जीन थेरेपी का तो रोल है, ये मतलब बाहर के काफी कंट्रीज में इसका चल रहा है जो है
7: जी जी
8: कि इस पे काम, तो आई थिंक वो एक होप है फॉर द फ्यूचर कि जीन थेरेपी से काफी हद तक ये जो सीवियर बीमारी होती है ये काफी हद तक ठीक हो सकता है
7: जी। तो मैम, अब क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं चाहूंगी वो लिस्नर्स जिन्होंने देर से हमारा प्रोग्राम सुनना शुरू किया और ये बीमारी क्या है और किस तरह से इन लोगों को मदद मिल सकती है, चलते चलते उन लोगों के लिए भी एक संदेश जो इससे ग्रसित है या उनके परिवार वालों के लिए, क्या आप कहना चाहेंगी?
8: मैं ये कहना चाहूंगी रश्मि जी कि जैसे हमने बताया कि ये जो ये एक डिजीज नहीं है एल्बिनिज्म या रंगहीनता या सूरजमुखी जैसे कहते हैं, एक जेनेटिक कंडीशन है
7: जी,
8: ठीक है, और इसको हमें समझना पड़ेगा कि वो बीमारी नहीं है, इसलिए जो भी पेशेंट है, जो भी पीड़ित है वो नॉर्मली रह सकता है, नॉर्मली अचीव कर सकता है, नॉर्मली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो जी सकता है
7: जी।
8: लेकिन कुछ बचाव उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा, त्वचा का बचाव जैसे मैंने बताया है, सनस्क्रीन या धूप से बचना जो है, उसके अलावा आंखों की देखभाल वो भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो विजुअल एक्विटी है या देखने की क्षमता वो कम है इनमें
7: जी,
8: तो इसलिए ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर उनको लगे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनको विशेष रूप से देखा जाए टीचर से। और एक और चीज, अफ्रीका वगैरह में ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा हमला होता है, कई बार मारा भी जाता है, क्योंकि वो लगता है कि शायद ये बैड लक मतलब सॉरी गुड लक लेके आएंगे मारने से, तो ये सब गलत जो धारणाएं हैं इनको हमें दूर करना है, मतलब जागरूकता।
7: आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर रश्मि सरकार, सफदरजंग हॉस्पिटल से डर्मेटोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आज इन्होंने एल्बिनिज्म से रिलेटेड इतनी सारी बातें यहाँ बताई। मैम, आप यहाँ आई, अपने कीमती समय निकाल कर हमारे श्रोताओं के लिए इतना अच्छा आपने प्रोग्राम उनको दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
8: आपको भी
7: जी। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम हम कदम लेकर हाजिर हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का वो वक्त जो हम नाम करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते के, और हर बार एक नए आयाम के बारे में हम करते हैं बातचीत हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। आज का हम कदम मैंने सोचा किससे जोड़ा जाए। जी, हम सभी जानते हैं कि 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो हमने सोचा चलिए फिटनेस की ही बात कर लेते हैं, योग की भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो जनरल फिटनेस होता है ना, आजकल बड़ी एक डिजायरेबल सी क्वालिटी हो गई है ना। जब भी हम अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं तो उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हमारे दिमाग में, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे दिमाग में, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसमें केयरिंग नेचर की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, यहां तक कि ड्रेसिंग सेंस की भी बात करते हैं, और उसी लिस्ट में काफी ऊपर आने लग गया है फिटनेस लेवल। जी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश जो है वो खुद करें, चाहे आप दूसरों के जरिए करें, लेकिन ये जो लिस्ट होती है ना दिमाग में, ये हमेशा अपनी चेकलिस्ट में ना वो टिक मार्क लगाती चलती है। तो भाई, पार्टनर का फिट होना, ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि उसके लिए आपके पास में एक फिल्मी हीरो वाली बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, या फिर आपके पास में हीरोइंस जो होती हैं हमारी जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनके लेवल का फिटनेस जो है वो आपके पास होना चाहिए। बात है ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, और लाइफ है ये एक दूसरे का साथ लंबे समय तक निभाने की। जी, ये तो ढूंढते ही है ना हम हमेशा अपने हम कदम में, और हमारे हम कदम लंबे समय तक हमारे साथ रहें, फिट रहें, दुरुस्त रहें, और ये सारी चीज़ें हम अक्सर जो है अपनी लिस्ट में शामिल करके चलते हैं, और मिल भी जाए तो बहुत ही मज़ेदार बात है, लेकिन उसके बावजूद तलाश हमेशा जारी रहती है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसी बारे में करेंगे हम आज बात हमारे आज के इस प्रोग्राम में, नाम है हम कदम, आप सुन रहे हैं मेरी यानी स्वाति के साथ ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। पहला गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए फ्रॉम द मूवी फना, सोनू निगम एंड वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। इस गाने से मुझे ना एक शिकायत है, और शिकायत ये है कि ये गाना बहुत छोटा है। इतना खूबसूरत गाना है कि इसको और थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, थोड़ी देर और इसे हमारे साथ रहना चाहिए था, है ना? आपको भी लगता है ना ऐसा? सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में मैंने अभी आपको सुनाया एक बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी फना। और चलिए अब रियलिटी की तरफ वापस चलते हैं भाई। सपनों की बातें, फैंटेसी और रियलिटी का जो मेल है ना, वही जीना चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, जहाँ फैंटेसीज पूरी हों लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से हमारी रियलिटी में उतर कर आ जाएँ। हाँ, हमेशा इस फैंटेसी वर्सेज रियलिटी की जो एक जद्दोजहद ना, वो चलती रहती है। एंड में हमें ये बात तो माननी पड़ती है कि भाई परफेक्शन जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्शन का जो आइडिया है ना उसको छोड़ दिया जाए, उसकी तरफ मेहनत ना की जाए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर मैं भी यही कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी बातें और मेरी प्लेलिस्ट जो है ना, कुल मिलाकर आप लोगों का जो मनोरंजन है वो जरूर करती रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में फिटनेस की। भाई फिटनेस वैसे तो एक पर्सनल गोल की तरह होता है, और फिटनेस की जो जर्नी होती है ना वो भी काफी अकेलेपन से भरी होती है। लेकिन आप जब भी फिटनेस से जुड़े जो कपल्स होते हैं ना हमारे, चाहे आप स्पोर्ट्स से जुड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें या फिल्म से जुड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लें, जब भी कुछ इस तरह के पेयर इन फील्ड्स में से हमारे सामने आते हैं तो एक चीज़ तो हम ज़रूर एडमायर करते ही है ना, और वो है कि इन दोनों की फिटनेस कितने कमाल की है। और आपको पता है आपका जो रिश्ता है ना उसमें भी ये फिटनेस बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि जो इंसान फिट होता है उससे अक्सर स्ट्रेस जो है ना वो दूर भागता है और उसका मूड हमेशा जो है बेहतर रहता है। हम सभी जानते हैं दैट एक्सरसाइज इज द मेडिटेशन ऑफ बॉडी, और ऐसे में जो रिलैक्स होते हैं, जो स्ट्रेस से दूर होते हैं, जिनका मूड बेहतर होता है, डेफिनेटली जिंदगी की सिचुएशंस में ना ऐसे लोगों के साथ में रहना, उनके साथ में जिंदगी बिताना काफी आसान तो हो ही जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम हम कदम में हम बात कर रहे हैं फिटनेस की और आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते की। तो चलिए इसी इंपॉर्टेंट रिश्ते के नाम मैं एक खूबसूरत सा गाना और प्ले कर रही हूँ। आज मैं सारे अपने फेवरेट गाने चुनकर लाई हूँ। आज जो है ना

आज थोड़ा सा रिलैक्स मूड में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. ऑब्वियसली यही एक ठहराव, यही एक रिलैक्स्ड जो मूड होता है ना, यही हम चाहते हैं हमेशा अपनी जिंदगी में, क्योंकि इसमें एक इस ठहराव के साथ साथ ना एक संतुष्टि का भाव होता है. और कुछ ऐसे गाने आज मेरे पास आप सभी के लिए. 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, मेरे यानी स्वाति के साथ प्रोग्राम चल रहा है हम कदम.

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर,
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
5: आकाशवाणी रेनबो
6: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आपके लिए प्रोग्राम हम कदम। और 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में आप सुनते हैं ये प्रोग्राम। और इसमें हम बात करते हैं आपके हम सफर की, आपके जिंदगी के इस रिश्ते की, आपके दिल के सबसे करीबी रिश्ते की। और अक्सर ऐसा होता है ना कि शेयर्ड इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं हमारे किसी भी रिश्ते को जो है मजबूत करने में, खासतौर पर जब आपके हम सफर की बात होती है। तो ऐसे में जब इंटरेस्ट सेम होते हैं तो बहुत सारे फ्रिक्शन जो है ना दूर हो जाते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों पे जहां हम एग्री नहीं करते हैं। और वैसे भी रोजाना की जिंदगी में अगर सब चीजें ही अलग अलग हों तो काफी मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन अगर फिटनेस जो है अगर आपका एक शेयर्ड पैशन है तो ऐसे में मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपके रिश्ते को तो मजबूत करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके साथ जुड़ जाती है और वो है रिस्पेक्ट। वैसे भी जब हम किसी को भी अपने लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, खुद के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, तो हमेशा हम लोगों के दिल में जो है ना उनके लिए, उनकी मेहनत के लिए एक रिस्पेक्ट आती है। और ख़ासतौर पे जब आपके अपने पार्टनर की बात हो तो भाई देखा जाए तो आपके पार्टनर एक तरह से आपके लिए ना आने वाले कल के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जुगाड़ रहा है ताकि वो हमेशा आपके लिए जो है फिट रहे, आपके लिए साथ निभाने के लिए हमेशा जो है वो दुरुस्त रहे। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करने की जब बात आती है तो आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म जो है एक सपोर्ट मिलती है आपके अपने उस फिटनेस से जिसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं। और अगर खास तौर पे अगर मिलकर मेहनत करते हैं देन ऑब्वियसली ये इस जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। और जो अकेलेपन की बात मैं कर रही थी ना कि फिटनेस की जर्नी हमेशा जो है काफ़ी अकेलेपन से भरी होती है, वो अकेलापन बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली रिश्ते को तो मजबूती मिलती ही है, ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे प्रोग्राम हम कदम। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और मजे की बात है जिसने गाया है वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया है। परिणीति चोपड़ा ने इस गाने को गाया है। अमेजिंग सॉन्ग, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा?
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
8: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और फिटनेस की बात हम कर रहे थे कि किस तरह वो आपके रिश्ते को मजबूती देती है। ये तो फिटनेस के अपने अपने सबके ख्याल होते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि योग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए फिटनेस लेवल जो है उनको बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और केवल फिटनेस नहीं, केवल शारीरिक फिटनेस नहीं आती है, बल्कि आपको उससे जो है एक मेंटल पीस का भी अनुभव होता है। खासतौर पर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी आपको के उच्चारण की। ओम का उच्चारण न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। इससे तनाव दूर होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो बेटर होता है, आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन रहते हैं, आपके तनाव में कमी आती है, डिप्रेशन को ये कम करता है, आपकी हेल्थ जो है ना, आपके हार्ट की हेल्थ, आपके जो खूबसूरत सा वो दिल है जो कि आपके हम सफर के साथ खासतौर पर बहुत करीबी तौर पर जुड़ा है, उसके स्वास्थ्य को बना के रखने के लिए भी जो है ये बहुत काम आता है। इसके नियमित अभ्यास से, यानी कि ओम के उच्चारण के नियमित अभ्यास से आप ब्लड प्रेशर को और दिल की धड़कन को जो है ना वो आप नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं। बहुत

से फायदे हैं इसके, मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर इन फायदों को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। फिलहाल मेरा जो समय है ना आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के बारे में बात करने का, वो खत्म हो रहा है और थोड़ी देर में आप सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम। फिलहाल आज का ये जो प्रोग्राम हम कदम ये था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
1: तो आज
2: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
1: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष

0: है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू।

तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ

0: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
0: क्लिक। लक्ष्मी, इस पैरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
0: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
0: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
0: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का।

0: वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में है, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ,

और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: पलियत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: FM Dragoban
5: 103 MHz,
4: News, Music and Entertainment. FM 103 MHz.
6: Good afternoon, dear listeners. This is Akashvani Kohima, FM Dragopan at 103 MHz.

0: FM 드래곤 밴 News, Music, and Entertainment. FM 103 Megahertz.
1: जी हाँ, अपना कन होने से आकाशवाणी एफएम ट्रैक अपन 110 मेगाहर्ट्ज उन्हीं ठगा सब बिलाग अपना कन सब के स्वागत करें से लाइव फोन इन हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम टे जी हाँ जो राते लाइव फोन इन प्रोग्राम से जुड़ी अपना कन लापसंद डिटा गीत कन होने बोले मोन से अपना कन इटू प्रोग्राम जाहिर की ना शामिल हो भी अपना कन कॉल करें भी 0370-2243-0360 नंबर को कोई दिया से 0370 जून तो कोट आसे और फोन नंबर आसे 2243036 एटो नंबर दे कॉल करिबे मोइलोते बातचीत करिबे आरो आपनर खानला पसंदीदा गीत खान मोइ यातेब्रा आपनर खान सब कारने बजाई दिया होबो तो हुनी थगा सब बिलाक आपनर खान सब के इटु प्रोग्राम दे स्वागत करिगिना आरो मोइ आपनर खानला कॉल्स रुखिया समयते एक साथ मिलेगिना हुरिबो धूम टू फिल्म की गीत गायसे सोनू निगम आरो बिपाशा बासू

0: শুনি থকা সববিলাক ইয়াতে আপনার খালনা কল সাহিয়া শুরু হয়ে যায় আছে তো শুরু করে দিয়ে আছে লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম।
1: হ্যালো
0: হ্যালো
1: ম্যাম, নমস্কার।
0: নমস্কার, ভেরি গুড ইভিনিং।
1: গুড ইভিনিং।
0: আপকা শুভ নাম ওর আপকা হাসি বোল রাহা হ্যায়।
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रैती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: ओके, बोले कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: गर्मी पड़ रही है, गर्मी का आनंद ले रहे हैं, दुकान में बैठे काम कर रहे हैं।
0: हाँ, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, रोज हर रोज सुन रहा है। आप सभी लोग गर्मी के वजह से बहुत तकलीफ में है वो भी सुन रहा है, पर यहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छी है, बारिश तो होता है लेकिन इतना तो गर्मी नहीं है। तो ओके, आज शाम कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: ये फिल्म का नाम है सरगम।
0: सरगम में कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: डफली वाले डफली बजा।
0: डफली वाले, ओके। और किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी, हमारे सबसे पहले तो आपको।
0: ओके, मैं तो सुनेगा
1: भगवान, फिर भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, धर्मवीर है दिल्ली से, लोकेंद्र वर्मा है, नानक एडी से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, विमल जी है, अमन भस्मकारी है, गोल्डी जी है, अमर सिंह है, पूनम जी है कानपुर से, भाई को मुंडा रमेश पात्र है, और शिव लोहार है विदिशा से।
0: ओके, ठीक है। रमेश जी, आपने कॉल किया, आपने जो गीत मांग किया है वो भी है, आप सभी लोग सुन रहा होंगे, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम,
0: वेलकम। শুনি থাকা সববিলাক প্রোগ্রাম সবসে পইলাতে আমি খালনতে কল করেছে মধ্যপ্রদেশ রমেশ প্রজাপতি, আর তারপর পছন্দ করেছে সরগম ফিল্ম কি গীত গাই আছে লতা মঙ্গেশকর আর মোহাম্মদ রাফি, আর তার তাই লগা কিছু সাথী বিলাক লগা নাম লই কিনা ইয়াদ করেছে। তো একসাথ মিলি কিনা শুনব সরগম ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमैलपुगला से बात कर रहा मैडम।
0: ओके ठीक है, तो कैसे हैं?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बोले, कौन सा गीत सुनने के लिए आज कॉल किया है?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा मैंने क्यों प्यार किया।
0: मैंने प्यार क्यों किया?
1: हाँ, मैंने प्यार क्यों किया।
0: ओके, मैंने प्यार क्यों क्यों किया?
1: यस मैम,
0: इस फिल्म में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: इसमें एक गाना है साधन प्यार की लड़ाई में,
0: ओके, और किसी का नाम लेना है डेडिकेट करने के लिए?
1: मिल गया गाना।
0: हाँ,
1: गाना मिल गया मैडम।
0: मिल गया है, इसीलिए पूछ रहा है। किसी का
1: हाँ
0: नाम
1: यस,
0: लेना है डेडिकेट करने के लिए?
1: सबसे पहला आप है।
0: ओके, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओके, भगवान सिंह
1: परमार।
0: परमार
1: दीदी, फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो गाना भी टाइटल सॉन्ग ही है दीदी।
0: ओके, तेरी तेरी और तेरे
1: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया,
0: तेरी बातों में। ओके, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को टाइटल सॉन्ग।
1: टाइटल सॉन्ग मिल गया दीदी।
0: जी हाँ, बोले, कुछ बोलना है आपको?
1: जी हाँ दीदी, हम दोस्तों को याद करना चाहेंगे दीदी।
0: ठीक है, बोलिए।
1: और हमारे सबसे पहले तो हैं शिवा लोहट जी हैं, अंजलि भस्मतारी हैं, रमेश पात्रे जी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। सभी श्रोताओं को डेलीकेट रहेगा आपको।
0: ओके, थैंक यू भगवान सिंह जी। आज तो आप लोग ने कॉल किया, आप लोग जो जो मांग किया है
1: जी
0: यहाँ पे है।
1: पहली बार में मिल रहा दीदी।
0: आज जी, आज पहली बार है इसलिए तो बोल रहा है, तो आप खुशी से सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद दीदी।
0: ओके, वेलकम। উনি রেখাসা বেলাক প্রোগ্রামটি এবার দুসরা গীত কারণে আমি এখন লটে কল করি কিনা মাং করেছে মধ্যপ্রদেশ ভগবান সিং পরমার, আর তারপর আজি রাতে পছন্দ করেছে তেরি বাতো মে এসা উলঝা জিয়া ফিল্মকে গীত গাইছে রাঘভ তানিশ ব্যাগচি আর আশিস কর লগা বাসে, আর তারপর তার দোষ খান লগার নাম লই কিনা আছে ডেডিকেট করি কিনা। তো যদি আপনার খান সব টিউনিন আছে, যান জন লগা নাম লই কিনা আছে, শুনিবি আর এনজয় করিবি।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम राकेश है और मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके, राकेश जी, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। बोलिए, कैसे हैं
1: जी
0: हालचाल?
1: जी बढ़िया है, बढ़िया है। इस समय जो है आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं।
0: ओके, ठीक है, अच्छी बात है। बोलिए, आज
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मूवी का नाम है दुश्मन। जी
0: दुश्मन।
1: नाइनटी
0: दुश्मन कौन सा वाला दुश्मन है? 1998 का है मेरे पास।
1: नाइनटी हाँ जी हाँ जी।
0: ओके, बोलिए कौन सा गीत है सुनने के लिए?
1: उसमें एक गाना है, आवाज दो हमको, हम खो गए।
0: ओके, और किसी का नाम लेना है डेडिकेट करने के लिए?
1: सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी हाँ, मैं तो सुनूंगी।
1: जी। तो उसके बाद है रमेश प्रजापति, पूरन वर्मा, अविनाश तेली, भाई अमल भस्माचार्य और विमल भस्माचार्य, अंजलि भस्माचार्य है और भगवान सिंह परमार है और को बिल्ला मिठा है और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए, और ये गाना डेडिकेट रहेगा, और
0: ओके
1: राम नरेश कंजर सभी तमाम सुनने वाले श्रोता।
0: ओके, ठीक है रमेश जी, आपने जो पसंद किया है मैंने बजाने के लिए ये तैयार करके रखा है। आप
1: जी।
0: सभी
1: और
0: लोग
1: सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया अच्छी बात यही, जिन जिन ने भी कॉल किया आज आपको, आपके पास उन्हीं उन्हीं पसंद के गाने मिल रहे, ये बहुत अच्छी बात है।
0: जी बिल्कुल, तो आपका गीत
1: जी।
0: सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।
1: जी, ओके ओके, धन्यवाद।
0: उन्हीं टा सब बिल्ला खुनी बहुत दुश्मन फिल्म की गेट गए से लता मंगेशकर और उदित नारायण लगा वास्ते और इटू गेट तो हुनी बोले मनोई के ना पसंद करे से शिमला पर राकेश और तार पर FM ट्रैक पर लोटे जिम्मान भी दोस तार बनाए रखी की ना से तार खान सब के याद करे से और हुनी टा सब बिल्ला की भी तो अपना खान सब हुनी भी और एंजॉय करे भी दुश्मन फिल्म की गेट गए से लता मंगेशकर और उदित नारायण।

0: Hello? Hello? Hello?
1: हेलो
0: कौन को ऐसे?
1: जी मैम, नमस्कार। मैं शिवा लोहा एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: शिवा लोहा
1: जी मैम,
0: एमपी से।
1: जी मैम,
0: ओके, बोले कौन सा गीत सुनना है आज?
1: मूवी का नाम रहेगा यादें।
0: यादें। यादें में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गीत है, जब दिल मिले।
1: ठीक है मैम, यही सुना दीजिएगा।
0: ओके, किसी का नाम लेना है आपको?
1: यस मैम, हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी राजस्थान से, हमारे मित्र रहेंगे राकेश जी शिमला से, हमारे मित्र रहेंगे सीहोर से भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी त्रिपुरा से, और रमेश प्रजापति जी, और हमारे मित्र रहेंगे बदरुआ से पुरुषोत्तम कुमार जी, और तमाम सुनने वाले, और अमल जी, बिमल जी।
0: ओके, ठीक है शिवा जी, आपका गीत सुने और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। होनी रगा सब बिल्लाक प्रोग्राम भी सेस क्रूबुले ला समय फिले पुंची जाया से। लास्ट गीत ना बजा गोटे अपना खान सब के जनाई दिया से कि इतिया प्राल अपसते हमारी 7:10 वेले नागमी स्टेक खबर दिया हुनिबो और आमी खान अको लकुरे आबो 9:30 मई अको लोई के नाहिबो हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम इतु समय तो भी अको लक करूबुले कारने सब हुनी थका खान चेष्टा करूबुले कारने अनुरोध करे से और आज राति जिमान जन भी आही के प्रोग्राम ते शामिल हुई अपना खान सब ऊपर खुशी जनाई दिया से और इनका है हदाय दिन আপনার খানলা জোরি এফ এম ট্রাকপেন 103 মেগাহার্টজ লটে বানাই রাখি থাকিবি কই কেনা মাং করে আছে। তো শুনিব ইয়াদে ফিল্ম কি গীত গাইছে উদিত নারায়ণ, আশা ভোসলে আর সুখবিন্দর সিং লগা আওয়াজে, আর এই গীত শুনিবলে মন হয়ে কেনা পছন্দ করেছে মধ্যপ্রদেশ প্রা শিবা লোহা, আর তারপরা তার লাগা এফ এম লাগা কিছু সাথী বিলাক আর তার লাগা দোষ খানলা নাম লই কেনা ডেডিকেট করে আছে, তো একসাথ শুনিব আর এনজয় করা হব।
2: दिल मिले तब गुल खिले, खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को

0: आरक्षण, तीन तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी पत्नी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स।

0: फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik Viksit Bharat ke sapne se bhara hua. विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प

Okay, this is Western Music Request Song. Anil Rongpi. Bisi khushi ase program de apnar ahigina shamil hoigina ase hole bi itia somoyte hindi film gan program jay ase etu karone moi apnar mangala git tu bajabo na paribo aro itia ete RJ's choice hindi film git program jay ase aro dusra message likhigina pathaise yate. Okay, this is from a silent listener. Well, anonymous writer, a very good evening to you. Arutar kwase FM Trakopan La program to 10 baji piche tak jabo parile bisi khushi pabo kwase. Well, anonymous writer, apnar laga soch ami khan lote share kura to bisi khushi ase. Holibi bhal kotha ekta tu 10 baji te FM Trakopan Sesoy gina thagilebi FM Rainbow to jai thagibule ase etu karone apnar khan mon dukhi nobi aro 10 baji pasote to FM Trakopan laga program jabule to alob dikdari ase kile mane mokhan bi rest lage etu karone apnar bujhi ase koina bhapna kore ase anyway apnar laga soch share kurani mite bisi khushi ase koi gina janai di ase Radhesham Naganpuri pra likhi gina pathaise RJ Didi, मैं हर दिन FM Trakopan सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है कोई की ना लिखी की ना पता ऐसे राधे श्याम a very very good evening to you बहुत बहुत खुश हूँ कि आप हर रोज FM Trakopan के साथ आपका जोड़ी बनाए रखा हुआ है और इसी तरह आपका जोड़ी बनाए रखिए आगे दिन में भी और बहुत खुश हूँ कि आप हर रोज प्रोग्राम सुनते हैं तो ऐसे ही आप प्रोग्राम में जुड़ते रहिए तो हुनी थका सब बिलक प्रोग्राम होते एक बार दूसरा गीत दिया से शान और तुलसी कुमार लगा वास्ते फिल्म से चांस बी डांस

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में

हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।